0: हे शरण योग दयालय दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवै चरण कमल शरण रमन गोपाल कीर्तन साध संगेन तरन नानक महासागर पैदुतरै सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वरै आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरै सर्ब रखिया गुरदयालय पै दुख विनाशनै भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुतै जेन कला धारियो आकाशं वैसंतरं काष्ट बेष्टं जेन कला सस सूर निखियतर ज्योतिं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह शे दंत जठर रोगनै तेन कला यसथंबं सरोवरं नानक नह शे जंत तरंग तोयन गोसाई गृष्ट रूपेण सिमरन सर्वत्र जीवनै लभद अंसांत संगेन नानक स्वाश मार्ग हर भगत नै मस्कं पगनंत सैलं करदम त्रंत पपील कै सागरंग लंघंत पिगंग तम प्रगास अंध कै साध संगेन सिमरंत गोबिंद शरण नानक हर हर हरे तिलक हीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा राजनै आवदहीनंग जथा सूरा नानक धर्महीनंग तथा बैसन वह
1: न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत सादृद्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी सवान स्याल खर है बिखम स्थान मन मोह मंद्रं महाया साध पंच तस्कर है हीत मोह पै परमं परमणं अहं फास तीखने कठने भावक तू असाध कूरं अगम तीर न लंगने पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरन कृपा करंत गोबिंद गोपालय सगलं रूग खंडनाई साध संगेन गुण रामंत नानक शरण पूरम परमेश्वरै श्यामलं मधुर मनुखं हृदयं भूम वैरनाई निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत सब जनाई अचेत मूड़ा ना जनंत कटंत सासा नित प्रतेश जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ती

सखा जी संग कितु आप जसंग मटंत सत पुत्र स्मृत व्यरिदय गुरमंत्र नय प्रीत भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारनाय

अंजनपाजयां जे करावे कंत तू सब किस पाई हर हां कंत बाज शिंगार सब बिरथा जाइए जिस कर वसया कंत सावड़ पगनी तिस बनिया हब शिंगार साई सुहगनी हो सुती हुए अचिंत मनिया सुपुराई हर हां जा कर आया कंत तां सब किस पाया

कर पातरे रावण जाए से तां लाजी है नित प्रति हिरा पर दर्ब छिदर कत ढाकी है।

खोजत फिर उपदेश पियो कत पाई हर हां जे मस्तक हुए भाग ता दर्श सुमाई।

थर चातरक चित सुचित सुसाजन चाहिए, जिस संग लागे प्राण तिसे को आहिए।

कटिया पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया अंग संगे और जाए बिसरते सुंफिया। है कोई ऐसा मीत जी तुरे बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ ताबो दशाय अनेक प्रेम प्रभ कारने पंच सतावै दूत कवन विद मारने तीखण बाण चलाई नाम प्रभ त्याई हर हा महा बेखा देकात पूरन गुर पाई है सतगुर कीनी दात मूल नाने खुटई खावो पुंचो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निदान दिता तुस हर नानक सदा याराद कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सुथान सुहावना सगले होए सुख हर नाम त्यावना जी करन जयकार निंदग निंदक पुमुए पाच साजन माने आनंद नानक नाम जाप पावन पतित पुनीत कतह नहीं सेवियाय झूठा रंग खुआर कहां लग खेवियाय हर चंद ओरी पेख काहे सुख मान्या हर हां हऊं बलहारी तिन जे दरगह जान्या किने कर्म अनेक गवार बेकार कन महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मन न जानई हर हां हर चंद उरी पेख काहे सच मानई जिस की पूजै औद तिसै कौन राखई बैद कने कोयो पाव कहां लो पाकई

धार्मिक कार्यक्रम मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाई बीदे बांदे कमल में पवर रही लपटाई।

सर्वं मूषण मर्म ना जानै मर्त हिरत संसार प्रेम परम ना बेदेव उर्जो मिथ व्यवहार

मगन पे ऊपरे प्रेम से सूदना सिमरत अंग प्रगट पयो सब लोह मैं नानक अदम पतंग। सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आद जुगादि सगल भगत तांको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार बलहारी इस जात को जे जप्यो सिरजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डलावें जियो सर्ब सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाऊ

निरपै हुई कै गुण रवै है, जात पिखूं तत सुई। कबीर जां दिन हौमुआ, पाछै पया आनंद। मोहे मिलो प्रभ अपना, संगी भजी गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरी, हम तज पलो सब कोई। जिन ऐसा कर बूझया, मीत हमारा सुई। कबीर आई मुझे मैं, अनेक करे कर पेस। हम राखे गुरे अपने, उनकी नो आदेश।

कबीर राती हूं मैं कारिया कारे उबै जंत लै फाहे उठ तावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पड़ा बेड़े उठाक पलास वे पी चंदन हुए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बुढ़िया इं मत डूबो कोई

एक कबीरा नाम सहजन किन्नी बारें बाट। कबीर सुख नाहे जुग करें जो बहुत मीत। जो चित राखै एक स्यों ते सुख पावै नीत। कबीर जे सुमरने ते जग डरै मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाई पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल। नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तां स्यों प्रीत कर जां को ठाकर राम। पंडित राजे भूपति आवै कौने काम।

झंग न झंखियै तुमरो कहो ना होए। कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साका कोई।

हरवे हरवे तेर गए डूबे जन सिर पार। कबीर हाड जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों कास। ए जग जाता देख कै पयो कबीर उदास। कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड। है वरे ऊपर शतर तर ते पुन तरनी गाड़।

दिया रंक ना हसिया कोई अजो सोनाऊ समुंदर में क्या जानू क्या हुई। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग

कबीर ऐसा सतगुर जी मिलाई तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मुकला सजी आबू जाऊ।

क्या जानू के जहार किया पयो कबीर कबीर कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै जे मुख निक सै राम ता के पग की पाणही मेरे तन को चाम कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ चार दिवस के पौने बड़ बड़ रुंदा ठाऊं कबीर मेहंदी कर कालिया आप पिसाए पिसाए तै सह बात न पूछिए कबू न लाई पाई कबीर जे दरियावत जाती हटके नाही कोई सो दर कैसी छोड़िए जो दर ऐसा हुई कबीर डूबा था पै उभरियो गुण की लहर चबक जब देख्यो बेड़ा जर्जरा तब उतर परयो हों फरक कबीर पापी भगत न पावई हर पूजा ना सहाय माखी चंदन पर हरै जह बेगंध तह जाए कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा ना मुआ जी नाही रोवन हार कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना उचरै बहोर कबीर ऐसी हुई परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ चंदौरा लीन कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए औगनियारे मानस पलो न कह कोई कबीर गागर जल परी आज काल जय फूट गुर जो ना चेत्यो अपनो आद माज ली जाएंगे लूट कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाऊं गले हमारे जेवरी जय खिंचे ता जाऊं कबीर जपनी काठ की क्या दिखला मैं लुई हृदय राम ना चेतई ए जपनी क्या हुई कबीर बिरों पयंगम मन बसै मंत न मन कोई राम बेउगी ना जिया जिया तां बौरा हुई

कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दैद सजाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर।

जिन हर का नाम ना चेतेउ कहां फलाने और कबीर संगत करिए साधकी अंत करे निर्बाहु साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिनाहु कबीर जग मैं चेतु जान कै जग मैं रहु सुमाई जिन हर का नाम ना चेतु बादे जन्मे आए।

कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराई प्रगट पए निदान सब जब पूछे धर्म राई। कबीर हर का

कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहू कहे ना को पतियाई, हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे। जैसे बचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कण हर छाया बरख परे सरताल। चातर कजों तरसत रहै तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिसरै आए मिलै प्रभात। जो नर बिछरे राम स्यों ना दिन मिले न रात। काबीर रै नार बशूर्यार हो रे संख मजूर।

कबीर रुड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है, जो धरनी महके। कबीर खे हुई तो क्या भया, जौ उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए, ज्यों पानी सरबंग।

हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधुकरी संत संग गुण गाए।

शब्द जो बाहे एक लागत ही पोई मिल गया परिया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे एक ना लगई जो बांस बजाइए फूका। कबीर है गए बाहन सगन काना छत्रपति की नार तास पटंतर ना पुजे हर जन की पनहार। कबीर नृप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मानो ओह मांग सवार बिखे को

संत जपावै नाम। कबीर जे मार्ग पंडत गए पाछे परी बहीर, एक आव घट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर।

कोई अनेके मिल गया, एक समाना एक। कबीर जा कर साधना से भी है, हर की सेवा ना है।

हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवां। कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के नाहे, जेने रचन रचाया तिस ही माहे सुमाए।

अंकश ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख कोथरी पारखिया गै खोल।

कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटुंब तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर

कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत कबीर दाता तरवर दया फुल उपकारी जीवंत पंखी चले दसावरी बिरखां शुभ फलंत कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाइए ठाक नायाब काट काट कबीर एक कड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्टे जो कि ने सो लाभ

नीचे लोइन कर रहो ले साजन कट माहे। सब रस खेलू पी सो किसी लखाबू नाही।

नीचे लोइन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सकी पी मैं जियो बसै जियो, जियो पियो बूझो नहीं कट मैं जियो के पियो। कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे। अर्ज उर्ज कै पच मुआ चारों बेदों माहे। हर है खांड रेत मैं बिखरी, हाथी चुनी न जाए।

अपना लाया फिर मना लग गई जे लुचै सब कोई यो पिरम प्याला खसम का जय पावै तांदे फरीदा जिन लोइन जग मोहिया से लोइन मैं डिठ

फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा हुए। कंधी उते रुखड़ा किचरक बने तीर, फरीदा कच्चे पांडे रखे हैं किचर ताई नीर। फरीदा महल निसकन रह गए, वसाया तल गोरां से निमाणियां, बैसन रूहां मल। आखी शेखां बंदगी चलन अज के कल। फरीदा मौते का बनाए मैं दिस है, ज्यों दरिया

जीवंदड़ों मोए ओए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरे ओए। महला पंजवां फरीदा कंत रंगावला

निरारी। हर गुण नाही अंत पारे, जी अंत सब थारे, सगल को दाता ओंगे कै आला खुमरारे। आपे ही तारण थारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चेहन नाही मुख नाम सारे।

बिनत करू अरदास सुन हो जे ठाकुर फावे जी हो दर्श मन चाओ भक्त हो मन ठहरावे भलो चराग अन्यारम है सब काल उदरी के नाम धर्म परगट सागल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

हर तारण तरन सुमरथ सभय वेद कुलहा समूह धारण सौ चित चीत अचीत जान सतसंगत परमिया दीर मुहो कथ मूरत करी चसा पल सिमरन राम नामी रसना संग लौ उछो काज अलप सुख वंदन कूट जनम कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंगिया तुम सौ राऊ

मात पिता पाई यार बंद पूजन की सब सूज परी बरदमानी होवत देन प्रत नित आव तो निकट विखम जरी रि गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गहलिहु कृपाल कृपा निद नानक काट परम परी हरे मन मूस बिला मह गर्वत कर्तव करत महामुगुना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुतवानता साजन सुख बंद पासो मोह्यो बड़ो सुखना बोयो बीज अहू मम अंकर बीतत जौद करत अगना मृतम झार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना

छत्र न पत्र न चौर न चावेर वैती जात हृदय न विचार हो रथ नाम असन गज सिंह असन।

कर्मोदारम संयम सुचनिमा चंचल संगे सगल वेदहारी पासो पंखी बिरखियस थावर भविद जोन भ्रम अत भारी।

विष्ठा वस्तु कृमयोदर भरो है दहद सथाय महामिखया को प्रतनहीनि अज्ञान हरो है। जोवन बीत जरा रोग ग्रसयो जमदूतन डर मृत मरो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गरत करो है। प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है।

काम क्रोध मद मद साधु तृष्णा बिनस जाहि हर नाम उचारी। इशनान दान तापुन सुच किरिया उचरण कमल हृदय प्रभु धारी। जन मीत सखा हर बंद पौ जीतान प्रभु प्राण अधारी। होट गही स्वामी समरथ हौ नानक दास सदा बलहारी। आपद कट्यों नु जात प्रेम रस चरण कमल संग।

हरे ओम उधोय करूर विदिर गुण गावे सर्वा तुम जिन जानय कबु कल सुजस गाबो गुरु नानक राज जोग जिन बाणय

राज जोग मान जऊ बसियो निर्वैर निरंतर। सृष्ट सागल उदरी नाम ले तरियो निरंतर। गुण गावे सनकार याद सनकार जुगा लग। तन तन गुर तन ये जन्म सुख यथ फलो।

परमान जाकी दृष्टि अचल ठा बिमल बुद्ध स्थान पहरशील सिंधाओ सख्त वीदार कहो कीरत कल सुहार सप्त दीप मुझाल रहना जगत गुरु पर समुदार दृष्ट धर तम हरण दहन यग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम जन क्रोध विनाशन लाभ मोह लोभ मोह बस करण शरण जाजक प्रतुपालन आत्म रथ संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुरु दिल का सतला गै सो पै तर गुरु जगत फिर सिहि अंगरो राज जुग लहना करै सदा अकल लिवरै करण सो इच्छा चार दुर्मस पूर जौन वै खवै कस बिमल विचार की है।

नाम परस जिन पायो सत प्रगट लभ लोए दर्शन परस ऐ गुरु कै अठसठ मजन होए सच तीरथ सच अजनान यर भोजन फाओ सच सदाओ सच पाकंथ सोहै सच पायो गुरु साबद सच नाम संग दीवो है जिस सच संयम वरत सच कवचन गल बखान दर्शन परस ऐ गुरु कै सच जन्म पुरवान।

नरसिंहनौकर है ती नरस सहस सुमपहि ती नरदली चै बहि ती नर थपो भी थप पहे सुख लहि ते नर संसार है अपय पट रिप मदत है सिख अथ ते नर जाल पुफण गुरु अमरदास सुपुर सन जह तय पढ़ियो इक मन थरियो एक करी क पछाण्यो नैण वैण मोई एक दो ठाए न जान जाओ सुपनी

तैलो बक्रोध दिश ना चली सुमत जल जानी जुगता गुरु अमरदास ने जो भगत है देख दर्श पावो मुक्त। गुरु अमरदास परसी आए भूम पादक बेना सही गुरु अमरदास परसी आए सिद्ध साधक आसा सही गुरु अमरदास परसी आए ध्यान लइए पौ मुखे गुरु अमरदास परसी आए पौल है गौ चुके। एक बिन दुगण जो तू तहै जासो मन तुर मान वाल है जाल पाप द्वार दी तड़ी गुरु अमरदास डिठ मिल हे सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रह ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लव रहे तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण गुण बखाण गुर जो गुण लाख गम तिने गुण यंतन जाना

जय कहता है पाद पूरा ये सावद दीप कदी पाए जाओ। जय सिख रे संग रे आओ तत् हर चरण में लाए आओ। नानक को

सा सतगुरु पूरजन की आसाओ। सतगुरु शिव परम पद पायो, यमनासी अवगत ते जायो। तिस फेठी दारिद्र न चंपै, कल सुहारितास गुण जंपै।

सहज तरोवर फल जाऊ ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन तेजन बड़ फागे ते मुखे पे सत गुर सबद मन गुरु पर चा पाया।

जाको देखत दरिद्र जावै नाम सुनिधान पावै गुरमुख ज्ञान ये तुरमत मैल तुवै जियौ। सतगुरु नाम की कलिव मन जपै दृढ़ तिरंजन दुख पाप कहो कत होवै जियौ। धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई है हुन जानै जाकी सेव सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाच है शब्द सारंगी कले बुलाई है। हुन जानै कूती दया पार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है। ब्रह्म फूले संसार छुट हो जूनी संहार जमकू ना डंड काल गुरमत थाई है। मन प्राणी मुग्ध विचार यह निस जप धर्म कर्म पूरे सतगुरु पाई है।

जी हों बाल बाल जाओ सतगुरु साचे नाम पर राज जोग ताखत रियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जत भयो आनंद तारण मनुख जन की उपरगास।

रहै गुरु बिन घोरे अंधार गुरु बिन समझ न जावै गुरु बिन सिरतन सिद गुरु बिन मुक्त न पावै गुरु करे सच विचार गुरु करे रे मन मेरे गुरु करे साधु सुपन वागन गट है सबरे रे गुरु नारायण वायण गुरु गुरु करहो गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखा नह देख अथ संसार महे गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे तारण तरन समरथ कल योग सुनत सुमादि सबद जिस की दे हुन दखण नास सुखदायक सूरज सरत ध्यान वस्त तह नीरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखते जग जाए परे रे हर बुद्ध रे दिसरे चाहत गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे।

समझलन तीर विवास बनाया, गयो दुख दूरा वरखण का, सो गुरुमुख देखा गुरु सुख पाया। समरथ गुरु सरयथ थरिया, गुर कीनी कृपा हर नाम दिया, जे देख जे धन गन हरिया। हे वासरी समान ते आलसा, नाम सुने सो तूफान डरिया, उपन दास सुआ जगत गुरु की, पार सुपीटा परस करिया।

सुख संपत दिदि रसिदन छूटे साथ धन बडूवत वंत महावल सेवक दास गये हुए तथ ताहे कहाँ पर वाहे काहूगी जाकै बसीसा धरयो गुर हथ।

पार्श्व परस मिलायो। जय जयकार जास जग अंदर मंदिर भाग जुगत शिव रहता।

सहज जोग निज पायो। अम्यो रचना बदन वरदात लख अपार गुरु सूत सब देहो मैं निवारे जाऊ। पंचा हरण दलियो सुनु सहज निज कर सहारियो। हरिनाम लाग जग उदरियाओ सतगुरु हृदय वसायो। गुरु अर्जन कल चरै तय जन कहाओ कल सदी पायो सूरठी। गुरु

कै मथुरा अमृत वैण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन भिखु नैण सत रूप सत नाम सस दुख तरियो यो रय याद पुरख पुर तख लिखियो अश्रु मस्तक तुर प्रगट जूत जगम गय रिपु मंडल छाय पारस परस परस परस गुरु गुरु गुहायो फन मथरा मूर्त सदा थे लाई चित्त सन्मुख रहो कल जगूज हाज अर्जन गुरु सागल श्रिट लग वीतर हो तह जन जाच हो जगत्र पुर जानी अत वसर रैन वास जाको इत नाम से परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंग वासना ते बाहर पै दिखियत थाम से आओ

कही तो पाई नहीं उमरे राम सियाओ अंत न पाव तो दीव सुबह मुनि इंद्र महा शिव जोग करी।

गोपाय नानक दाकारा सहाय जी आनंद न रहै लबलाई जिन्ना प्री प्यार मैं दर्शन कम तृप्ति है नानक मिले सुभाई गुणमुख यो मन रैसी है जिन्ना प्री प्यार कहो जी मैनु फिर बाहरे जासू देखने अपना नानक थी मैनु पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर नेहाओ तै प्रीतम सच्चे लाया राती अतै डेहाओ नानक प्रेम सुभाया।

माया बिछड़ सु जाई गुगुरमुख हुक्म नि सह केरा हुक्म ही सुख पाई हुक्म से भी हुक्म अदा दे हुक्म समय सुमाई हुक्म।

लग जाई। जिन्नो प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बार हो फिरा भी हृदय रखा सुमाल। जिन्ना एक मन एक चित थाया सतगुरु सोचित लाई तिनकी दुख भुगयो मैं बड़ा रोग गया ने दुख पहल विलाई।

रत्ती सीधी मुखड़ा मुड़ाना जिनी से जाता साई छड़ छड़ बावदी कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई।

मित पै जाए मित विग साए जिस मित की पैज फावे तुसी विचार निक होप तुफाई अर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बैराज आप टीकाया सब सिख बंद पाप तुफाई रामदास पैरी पाया।

बारिक नह जुब नह बिरदी कछ बंद ओह बेरा नह बुझिए जौ आए परै जम फंद जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे।

पढ़े हैं बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्च

तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु।

दोस्त दुख ते लेहो बचाए, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो।

कहां पयो जो दो लोचन मुंड कै, बैठ रहियो बाक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लिए सात समुद्र ना।

संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पनीत करते पवित सतगुण रहया पर पूरे भगवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दुई दाई

हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, ताऊ चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुमका, आप हाथ दै मोहि बचाव हो, सुखी बस मोरो परिवारा।

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नूं तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दीआं रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खाणियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह सतगुरु, तेरे गुणा नूं कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमता नूं कोई नहीं जान सकता। सो सत्संगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नूं ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंध नहीं ना कटदा वो जीवदे जी भी नरक भोगदा है, उदा सारा धन हौस

सुख दी गुजारेगा जिंदगी। आ सतगुरु यही पवित्र उपदेश भी सुमदार है। आ देखो एक गरीबड़े बुढ़े बाबे ने एक दिन दी मजदूरी दे बदले गुरु दियां रहमतां मिलियां ते सारी दुनिया ते बहादुर शाह ने राज किया। एक तिल मात्र भी कीता होया दान गरीब दे मुंह विच पाया व्यर्थ नहीं जाएगा। गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक, गरीब नूं खवा के खाएगा ना, गरीब नूं पहना के देखेगा ना, ते देख तेरे मन विच किड्डा आनंद आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाणी विच आख रहे ने, दस नख कर जो कार कमावे तां कर जो धन घर में आवे, तिस्ते गुरु दसंज दो देही सिंह सो जस वो जग में ले। पुन दान सेवा सिमरन करन वाले दा जस दुनिया विच भी हुंदा है ते निरंकार दी दरगाह विच भी हुंदा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। दो चार सूट महीने दे विच समांदा है, कट समा लिया कर, एक गरीब नूं पहना दिया कर, गरीब नूं पहना दिया कर। वे इस गल दा ख्याल रखना है, जिथे दसां नौहां दी किरत करके अपने बच्चियां दे मुख विच पाना है ना, उथे दसवंद कढ के गरीब दे मुंह विच भी पा देना है। पर सतसंगियो अपना ते बड़ा ही माड़ा सुभा है, अपना हिस्सा भी खांदे हां गुरु दा हिस्सा भी खा जांदे हां। जे आपां दसवंद नहीं ना कढदे ते समझो गुरु दे हिस्से दा भी खाई जांदे हां। 24 घंटियां दे विच 2.5-3 घंटे सवासां दा दसवंद बनदा है, वो भी खा जांदे हां। गुरु दा धन भी खा लिया, गुरु दा समां भी खा लिया, घर दा गुजारा फिर भी नहीं चलदा। भाई की करां, गुजारा ही नहीं चलदा। पर कित्थों चले, जेड़ा किसे दा हक खावे उहदा गुजारा चल ही नहीं सकदा। मन के देख गुरु दी गल, तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, चलेगा तेरा गुजारा। गिण गिण के दसवंद कढ़िया कर, गिण गिण के दसवंद कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा, गुरु आपे ही भाग ला देंदा है, गुरु आपे ही रहमतां कर देंदा है। ते इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सानू बार बार आख्या है, बई गोलक राखे ने जो छलका करे व्यापार, नेक कमाई कर गोलक राख, भाव अपनी कमाई विचों दसवंद गिण गिण के कढ़ी जाया कर, ते फिर देख इस चंगे सवा ते खुश हो के गुरु तेरी झोली विच किन्नियां रहमतां पा देवेगा। देंदा दे लेंदे थक पाए, देण वाला दित्ती तुरिया जांदा है, लैण वाले थक जांदे। देखो गुरु किवें बख्शिश कर रहा है, तू दाता गिणदा थक जाएगा, लेंदा थक जाएगा, देण वाले ने देंदा नहीं थकना। पर कदों, जदों गुरु दे हुक्म अनुसार चलेगा, जदों गुरु दा हुक्म पल्ले बन लवेगा। आओ मन विथियां जोड़िए, श्री गुलशन कुमार जी, श्री दर्शन कुमार जी, जिन्हों का यह सोहना उदम के भाई गोपाल सिंह जी, जिन्ह दियां पुरातन गाईयां हुई रीतां, जिन्हों आप संगत बहुत ही पसंद करते हो बंदशा, उन्हों के उदम के नाल आप संगतां यह बंदशा भेट की जा रही ने। आप जी ने अगे भी जो कैसेट तू मेरा पिता तू है मेरा माता आप संगतां दे भेट कीती है, उसनू प्यार दिता है, आस है कि इन्हां सेवादारां दी ये सेवा इसी तरह कबूल दे रहोगे ते असीस देंदे रहोगे। सतगुरु बख्शिश कर इन्हां ते, इसी तरह तेरी गुरबाणी दी सेवा घर घर विच तेरे शब्दां दीआं कैसटां पहुंचांदे रहण, सब दीआं झोलियां गुरु रहमत नाल भरे। ते कीर्तन समां समाप्त है, कोई नहीं जान सकता।

अमै दिस शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मो वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै।

0: गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, सो को टल गुर सेविए एहन सहज सबाए, दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
1: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इकसरना, मिले दान संतरेन जे लग पौजल सरना, बिनत करो अरदास सुनो जेठा।

0: ईश्वर वर्मा इंद्र सुने मुखसाला हनुमंद नानक भक्त सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
1: सत्संतों के आंचले असस काय स्नान
0: सुने पड़ पड़ पावे मान।

0: है भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने
1: नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: अनंगी अनाथे निरसंगी परमात्मा
1: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे
1: प्रपंगी परमाते समस्ति प्रभुते
0: कलंकन कनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज देशवं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज देशवं परम विदे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम युक्ते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सूतर मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो छा छा नमो पू पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो संसनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईश्चिके नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सतदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अदो उदार जंगम हर्ता
0: परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा सदाता दयालं
0: चेदी अपेदी अनामंग कामंग
1: समस्त अपराधी समस्त अस्तामंग
0: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं पीत हैं अपे हैं
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है
0: भुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमाने समस्ति निधाने
0: नमस्त्वंग निर्नाथे नमस्त्वंग परमाथे
1: नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अपंजे
0: नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग अपाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
1: नमो छा छाहे नमो मा माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं
0: नमो सर्व दृसं नमो सर्व कृसं
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदारद सिद्धं निवासी
0: सर्पटचंत व प्रसाद अनवृत कर्मे अनवृत धर्मे
1: अखल जोगे अचल पोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अखल धर्म कर्मं
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं भुक्ता सर्वं जूता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: कृपालचंत व प्रसाद आदरूपनाथ मूर्त जोन पुरक पार
1: सर्वमाति महादेव पेवाद उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल
1: यतर ततर विराजी अब तू उतरो प्रसाल
0: नाम धाम न जात जा कर रूप रंग न रेख
1: आद पुरख दार मूर्त जोन आद शेख
0: सोर न पेश जा कर रूप रेख न राग
1: यतर ततर दिशा विशा फैलियो अनुराग
0: नाम कम पहीन पेकर ताम हो न जा
1: सर्व मास रत मास से मानता है
0: एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेला खेल खेल अनंत को ब्रेक
0: देव देव न जानी जय वेद और कतेब
1: रूप रंग न जात पाछु जानिए के जेब
0: आत्मा न जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चकर बकर फिरे चित्र चक मानिए पुरतीन
0: लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप
1: आदेव नाद मूरत था प्यो छबे जय थाप
0: कर्म रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार
1: शिव विश्व रचो संजन कण पंजन हार
0: काल हीन कला संयुक्त काल पुरख देश
1: धर्म तां चो परम रहत पूत लख पेश
0: अंगराग न रंग जाके जात पात ना नाम
1: गर्व कन्या दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप अमीक अनुस्थत एक पुरख अवधूत
1: गर्व कन्या सर्व पंजन आद रूप सूत
0: अंग हीन अपंग नातम एक पुरख अपार
1: सर्व लाज सर्व काज सर्व को पार
0: सर्व कंता सर्व हंता सर्व तेन पेख
1: सर्व शास्त्र ना जानिए जय रूप रंग रेख
0: वेद पुराण जाके नेत पाकत नित
1: प्राण शास्त्र ना आवि बहुचित
0: बार संत व प्रसाद गुण गन उदार महिमा अपार
1: आसने पंगु महानंग
0: को प्रकाश निजन अनास
1: आजान बाहु शाहन शाहु
0: राजन राज पाना न पान
1: देवान देव उपमा महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बाल
1: रंकार रंकार अलंकार
0: अद्भुत अंग अब अपंग
1: रत्नित पार गुण गन उदार
0: गण प्रणाम निर्वय निकाम
1: अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: अदृश्य करम अदृश्य धर्म
1: सर्व बना जान बंड
0: श्री संत व प्रसाद गोविंद मुकंद उदारे अपारे
1: हरियं करियं निर्नामे अकामे
0: भुजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चतर छंद ना सत्राय ना मित्राय ना परमंग ना पित्राय
1: ना कर्म ना काय अजन्म न जाए
0: ना चित्राय ना मित्राय परे है पवित्र
1: परचिचिये अदिशिये अदृश्य अकृश्य के आ कंज कर्मे के आ पंज भरमे अतूत भरने के प्रभूत करने के अशोक भरने के सर्वा भरने के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपो अनुपे के चित्र बहिने के अधीने के पाक गैब है के गैबुल गैब है के कारण को निंद है के रोजी गहिंद है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के आकल आलामे के साहेब कलामे हमें सुल सलामे सली खुदमदामे बल हिंदुल मकाने जमीलुल जमाने हरिफुला जी मेरे जायक यकीने अजीजो निवाज है गली मुल्क राज है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है समस्त अपराज है सदा सरसाज है निर्वास रूप है दाद है अनूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में सुबं सर्पागे सुसर्पानुरागे के नरकम प्रनाश है प्रचुल प्रवास है प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है अनुक्त स्वरूप है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अनाश है उदास है अदंध है अबंध है नचे

0: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता अनंगं स्वरूपे अपंगं प्रभूते अगाध स्वरूपे निर्बाध प्रभूते नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना ताते ना माते ना जाते ना पाते सदेवं प्रभा है अजय है अजा है
1: भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
0: हमें चुल सलाम है समस्तुल कलाम है
1: साहिब दिमाग है के उसनल चिराग है
0: के कामल करीम है के राजक रहीम है
1: रोजी दिहंद है के राजक रहिंद है
0: करीमुल कमाल है के उसरल जमाल है
1: गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज
0: है हरीफुल शितान है रासल फितान है
1: अंगंग प्रणास है समस्तुल निवास
0: है अतंजुल करीम है रजायक रहीम है
1: समस्तुल जुबा है के साहिब किरान है

0: अचलन प्रकाश है कि अमित सुभाष
1: है, अजल स्वरूप है कि अमित भूत है,
0: अमित प्रसा है कि आत्म प्रभा है,
1: अचलन आनंद है कि अमित अपंग है,
0: बार शांत है प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगान मुदा
1: हर हर गंज हर नर प्रपंच
0: गुण प्रणाम मन मन सलाह
1: नर अखंड बार नर अमंड
0: पवन आस मन मन प्रकाश
1: गुण प्रणाम जल थल मुदा
0: पंची जी अंग आसन अपंग
1: उपमा अपार गत में तुदार
0: जल दाले अमंड दिस विषय
1: पर जल थल महंत दिस विषय
0: पवन अस्त्र तर तुरा
1: आजान बाहु एक

0: चलते सुर है
1: ब्रह्मंड से कलखंड से
0: पढ़ते पर है गुणा कर है
1: जप जप तप थप
0: अक्ता कृत अमृत अमृत है
1: अक्ता अमृत है गुणा कृत
0: अक्ता कृत तन्नी कृत है
1: अमरेश्वर है परमेश्वर
0: अक्ता कृत अमृत।

0: समस्तुल्पण
1: समस्तुनिवासे
0: कामंग विपुते समस्तुल स्वरूपे
1: सदा
0: सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासे
1: करिमल कुलिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजाय गनी
1: हरियं करियं करिमुल रहिमे।

0: देश मनंद मवासन माते गजान के मान मलैया
1: गारे गरान के तोर नहा सो बात नहीं चकचार लवैया
0: सब श्री सब को सिर नायक जाचक ने एक सो एक दवैया
1: दान विदेव नंद निसाचर पूत विवेक भवान जपेंगे
0: जीतते जल में थल में पल ही पल में सब ताप थपेंगे
1: उन प्रतापन बाद जय तुन पापन के बो पुज कपेंगे
0: सा समो प्रसन्न प्रेजा सतर सबे अवलोक जपेंगे
1: मान विंद्र गजेंद्र नराद बचोन तुर लोक राज करेंगे
0: कोष नान गजा एक दाना ने एक स्वयंवर साज भरेंगे।

0: परिवार सेवक सब करता रहा
1: वचन सदै करिए सब रिंको आशंगरिए
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्याचा
1: शार को अपना दिया हो जो वो जो सो तुम ते पाओ
0: सेवा से कमारे तारिए चुन चुन सत्र हमारे मारिए
1: फाते मुझे बड़िए मरण काल का त्रास नरिए
0: हो जो चला हमारे बच्चा श्रीया तू जो करियो रक्षा
1: हमारे साहिब संसाय प्यारे
0: जैन बंदोष चन के हंता तुम हो कर जनता
1: काल पाए ब्रह्म भक्तर काल पाए शिव जी भक्तर
0: काल पाए कर पिछल प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: काल जोगी सब कियो वेद राज में मौजूद हो
0: जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार हता है हमारा
1: काल सब जग बनायो देव देश में बजायो
0: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
1: नमस्कार तेसी को हमारी सुख बजाज नाम सवार
0: शिव कण को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो
1: भगत के अंदर की जाने बले बरे की पेर पिछाने
0: चेटी ते कुचरे अतुला सत पर कृपा दिश कर फूला
1: दुख पाए रुगी सुख पाए सरंगे
0: सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: जबत कर कर तारा प्रजा तब दे उपारा
0: जाबा कर कर तो कबो तुम मैं मिलत दे तर सबो
1: जेते वरन सब दारे आप आमी बुझू चारे
0: तुम सब ही तेरा त्रिर आलम जानत बेर पे दर आलम
1: काने कान लम आज नील नाद संभ
0: ताका मूडो चार दपेदा जाको पे उना पाव तबेदा
1: कर पाने मने स्मा मूर्ख
0: महादेव को कैसरा से निरंकार का चिंतन है पेव
1: आप आवनी बुध है जेती बरन बिन बिन देती
0: तुमरा लखा ना जाए पसारा के भी सजा पसंद संसारा
1: एके रूप नूस रूपा रंग प्योर आपके भूपा
0: अंडा जेरा से तजकीनी उत्पज खान बहु रज दिनी
1: कौन भूला जहवे तो कौन सी उपसंग कर गेता
0: सगरी शी दखाए चंबव आजुगा स्वरूप से अंबव
1: शबरी दम करो सिख बार सिख संगरो
0: दोटे ते उठू तो पाता सकल मिलेश करो रण काता
1: शिव सामने परे तिनके दुष्ट कुतु मरे
0: पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
1: कोई बात या है ताके कान नहीं आए
0: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्टर तत्काला
1: दर्शन जाना रो ताके ताप नहीं मारो
0: रेत सद कर्मो सब हो ही दूर छाप से सके ना कोई
1: एक बार जिन में सुमारा काल फास्ते ताए वारा
0: जिन नर नाम के हारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा
1: केस में सुन दियारी आप आते ले उबारी
0: सर्व ठोर मोह साई दुष्ट दोख ते ले ओ बचाई
1: कृपा करी भज मत ग्रंथ करा पूर्ण सब राता
0: खेल बिक सरल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छे करता
1: श्री यीशु जब दे दिया ला पूर्ण ग्रह ग्रंथ काला
0: मन बासल पल पावे सोई दूह न तिसे व्याप्त कोई
1: उसने जो यास रस न पावे इसने मोज लटतता आवे
0: दूध दर्द पौ निकट

0: अंत ना पाया
1: सुनर मुंजन अमृत गोज दे सो अमृत गुर ते पाया
0: पाया अमर और गुर कृपा किन्नी सच्चा मन बसाया
1: जी जन सब तुद उपाए एक वेख परसन आया।

0: मन तो वो शब्द लागो हर सुर हो चित लाए
1: कहे नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे से साहिब जाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया
1: ए तिसना बड़ा रोग लगा मन मनो वे सारे
0: वेदा में नाम उत्तम सो सुरे ना।

छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया मुल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाए जिसदा ज्यों तिस मिल रहे हर वसे।

0: बीज बचावे।
1: जाच कुजंग सुदानव देव अपेव सुमे सब ही करते आवे।
0: ओम आकाश पताल रसातल जाच पजंग सवे से न्यावे।
1: पाए सके नहीं पार प्रवाहु को नेत ही नेते भेद बतावे।
0: कोई सके सभी कुजिया सुरहार परे हर हाथ नावे।
1: नारद से चतुरानंद से रुमरारिक से सबू मिल गायो।
0: वेद देव ना वेद लगे हो सवार परे हर हाथ नायो।
1: पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ते आयो।
0: ध्यान धरो ते को मन में जे को तो सवे जग शायो।
1: वेद पुराण कतेब कुरान अपेद निरपान सबे पचहारे।
0: वेद न पाए सके न वेद को गेद तैन शेद पुकारे।
1: राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग।

0: जन संजय बस्त भवानी
1: ब्रह्मा विश्रांत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो
0: गोड इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय पाए
2: योग जत दस खेद रचायो
1: भोर आप ही बीच मिलायो
0: दानव देव निंद पारा गंधर्व जच रचे सुबचारा
1: भूत पवेख पवान कहानी कट कट के पट पट की जानी
0: दाद मात जय जात न पाता एक रंग काहू नहीं रहता
1: सर्व ज्योत के बीच समाना सब सर्व ठौर पहचाना।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पातन हेन जे हे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवनम

देव सबै मन इंद्र महा शिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहियो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन का प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन का

अंतुनो पावतु देव सबै मुन्न इंद्र महाशिव जोग करी फुन बेद बिरंच विचार रहयो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन कौ प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन कौ गुरजोत अर्जुन माही तरी सो कहो तल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए ओ वै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सब नाम दा वेसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी